0: ये है लाइका रेडियो, भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
1: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
0: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
1: गारंटेड
0: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल,
1: फोन 02085748410।
0: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
2: Uncle G spent £40,000 on rent, but zero online. His shop is empty. His nephew's TikTok is booming. Be seen. Visit HeartyHanks.com. Hearty Hanks. Outdated is out of business. Visit HeartyHanks.com today. 89% of UK customers check online before they spend. If they don't find you, they won't choose you. Go digital. Visit HeartyHanks.com now. Hearty Hanks. Facts don't lie. Results don't wait. Visit HeartyHanks.com now.
3: Seven stations. One podcast. One mobile app. Advertise on Leica Radio Network, offering the largest Asian radio and digital content in the UK. Call 0116 471 0697 or sales at leicamedia.co.uk. Sounding good throughout the night with the biggest soothers. It's your Leica Radio.

मने सगल पवन की सुध, मने मोह चोटा ना खाए, मने जम के साथ ना जाए, ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए, मने मार्ग ठाक ना पाए, मने पत्स्यों प्रगट जाए, मने मग ना चले पंथ, मने धर्म सेती संबंध।

मुख वेद पाठ असंख जोग मन रहे उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार, असंख सूर मोह पक्षार, असंख मोन लिवलाए तार, कुदरत कौन कहा।

मूर्ख अंधगोर, असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाए जोर, असंख गलवड हत्या कमाए, असंख पापी पाप कर जाए, असंख कूड़े यार कूड़े फिराए, असंख मलेच मल भक खाए, असंख निंदक सिर करे भार, नानक नीच कहे विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद भावे साई बलिकार, तू सदा सलामत निरंकार, असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख

गावन पंडत पढ़न रखी सर, जुग जुग वेदा नाले गावे मोहनिया मनमोहन सुरगा मच प्याले, गावन रतनु पाए तेरे अड़सठ तीरथना।

भगत रसाले होर केते गावन से मैं चितनावन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है भी हो

अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश। आसन लोय लोय भंडार जो कुछ पाया सो एका वार, कर कर वेखै सृजनहार नानक सच्चे की साची कार। आदेश तिसे आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश। एक दूजी बोल लख होवें लख होवें लखवीस।

0: listen to Laika Radio 90s. On Laika Radio mobile app, laikaradio.com and Alexa. Play Laika Radio 90s.
1: ZTV HD पर देखिए एक अनोखी प्यार की दास्तां। मिलिए 46 साल के बिजनेस टाइकून आर्यवर्धन और 19 साल की प्यारी सी अनु से।
2: तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है?
3: खुद से भी ज्यादा।
1: जिन्हें तकदीर चुपके से बांध रही है एक अनजाने रिश्ते में।
3: जो बात मेरे दिल में वही बात आर्य सर के दिल में भी है।
1: क्या ये नजदीकियां बदल देगी उनकी किस्मत की रेखा? देखिए तुम से तुम तक हर रात 8 बजे ZTV HD पर। अवेलेबल ऑन स्काई 707, स्काई ग्लास 714, वर्जन मीडिया 809, BT 394।
0: Laika Radio Network. Broadcasting across the UK with Asian stations. Did you know you can advertise on this station? Laika Radio Midlands, plus our other offerings. Laika Radio Greater London, Laika Gold Greater London, and Laika Radio Greater Manchester. As a combined network, we can give you a competitive rate to spread your message to a wider audience. Call 0116 471 0697 or email sales@laikamedia.co.uk.
4: Hello friends, I'm Sarita Sabarwal. Every weekend, 4 till 7, बहुत सी मीठी मीठी बातें आपके साथ शेयर करती हूँ। सैटरडे एंड संडे मेरे साथ ही रहेंगे।

0: अरे हाँ, ये कौन सा महीना है?
1: जनवरी। ऋतु सुहानी झूमती है।
0: ये पुलिस क्यों घूमती है?
1: अरे बाबा, तुम्हें नहीं किसी चोर को ढूंढती है।

0: तो तुम क्या?
1: हाँ तो मैं क्या कह रहा था?
0: हाँ तो
1: मैं कुछ कह रहा था,
0: बोलो ना, भूल गए?
1: अरे हाँ भूल गया. चलो चलो घर चलो.
2: Feel Good Track brought to you by Dairy Valley.
3: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
4: Like a radio.
2: Traffic and travel.
5: I'm Greg Edwards. On the M6 southbound, some long delays between Junction 6 at Spaghetti Junction and Junction 5 at Castle Bromwich after an accident earlier, but all lanes have been reopened. Meanwhile, on the M69, traffic's on the move on the sensors and it's flowing well on the M42, heading through those ongoing roadworks between Junction 6 at Birmingham Airport and Junction 9 at Coleshill. Reminder, there is a 50-mile-an-hour speed limit through the restrictions there. If you're using the M1, it's looking okay through those emergency repairs which continue on the southbound carriageway just by Leicester Forest East services. One lane closed off. And that's your latest traffic and travel.
2: This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to your favourite shows. Or log on to leicaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@leicaradio.com. Or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.uk. Leica Radio.
6: Citybond Travel proudly presents Yatra Tours 2026.
7: Discover Kailas Mansarovar, Chardham, Amarnath, Sri Lanka with Ayodhya, Ayodhya with Kashi, the Golden Temple Amritsar and more.
6: Book before the 31st of October and get £150 off Kailash or £100 off any other Yatra Tour.
7: Also explore 2026 cruises
6: from Alaska to the Caribbean, the Mediterranean, Japan and Korea. Visit us at 5 Melton Road, Leicester or call Citybond Travel on 01162 167 225. We're at all protected.
8: ફાધર સન નો બોન્ડ જેટલો સ્પેશિયલ છે એટલી જ સ્પેશિયલ ફિલ્મ આવી રહી છે.
9: અંકલ તમે પહેલાથી આવા જ છો.
10: આવા એટલે કેવા?
8: ધર્મા પ્રોડક્શન્સ પ્રેઝન્ટ્સ જિંદગી વન્સ મોર.
10: મારો બાપ બનવાની કોશિશ કરે તો બુદ્ધિ વેચી આવે છે તું? અરે જિંદગી એવી મોજથી જીવજે કે જિંદગી ખુદ તને આવીને પૂછે.
8: આ ફાધર્સ ડે ફીલ ધી ઇમોશન્સ, લવ એન્ડ ફેમિલી મોમેન્ટ્સ વિથ જિંદગી વન્સ મોર ઇન સિનેમાઝ ઓન 19 જૂન. ફોર મોર ઇન્ફોર્મેશન વિઝિટ બકરાનિયા મીડિયા ઓન ઇન્સ્ટાગ્રામ.
10: તો થઈ જાય જિંદગી વન્સ મોર.
11: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फौरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com. लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागसन.
3: सेलिब्रेट फादर्स डे ऑन Sunday, 21st of June in Ambala style. Ambala Sweets has been bringing families together through taste and tradition since 1965. Freshly made, beautifully presented and perfect for the dad who deserves the very best. Classic laddus, habsi halwa or an assorted mithai selection. Make his day extra special with a gift from Ambala. Order online today at ambala.co.uk and celebrate Father's Day in Ambala style.
12: Khakra Crunch भाकरी मंच, चिक्की स्वीट, पापड़ बीट, पिकल्स हीट, ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक.
13: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स, खाखरा, नमकीन, पापड़, पिकल्स, चिक्की, पॉट मील्स एंड मच मोर.
12: जयमिन फूड्स देसी क्रेविंग्स अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स.
14: एक ऐतिहासिक अने दिव्य अवसर पेरिस मा भव्य BAPS स्वामीनारायण मंदिर ना ग्रैंड ओपनिंग मा दर्शन नो लाभ. आ पवित्र यात्रा मा जोड़ाओ आपना परिवार साथे, जहां मड़शे शांति, भक्ति अने आनंद, अने साथे आईफिल टावर, सेन रिवर क्रूज अने पेरिस सिटी टूर नो आनंद मानो. डिपार्चर 5 सितंबर ना. मंत्रा हॉलीडेज, कॉल करो 02037736333. मंत्रा हॉलीडेज, व्हाट्स योर ट्रैवल मंत्रा.
15: ZTV HD पर देखिए साहस और जज्बे की नई कहानी
16: जगदात्री,
15: जिसमें माँ गौरी की सरलता बसती है.
16: माला ले आना, लाया जी.
15: वो वक्त आने पर महिषासुर मर्दिनी भी बन जाती है।
16: टीम, गेट रेडी फॉर द एक्शन।
15: जिसके शांत स्वभाव में भी छिपा हो शेरनी का रूप, वो है जगधात्री। देखिए रोज रात 8:30 जी टीवी HD और Z5 पर, अवेलेबल ऑन स्काई 707, स्काई ग्लास 714, वर्जन मीडिया 809, BT 394।
17: ये है लाइका गोल्ड।

मोहम्मद रफी एंड द वर्कर्स, वी ऑल ऑफ दिस वन टॉपिक. चांद मेरा दिल, चांदनी हो तुम, हम किसी से कम नहीं. Kajal with you till 10 this morning. 11 minutes to 8 is the time. Well done to Sabiha for getting the answer right for today's Bollywood flashback. Banu, yes, as well, give you

0: के एक नई मोहब्बत की दास्तान तुमसे तुम तक हर रोज रात 8 बजे आपके अपने जी टीवी HD पर।
1: कुछ एक्साइटिंग खाने का मन है तो आओ एग जंक्शन लेस्टर, यहाँ मिलेगा सिजलिंग एग कीमा, फ्लेवरफुल बॉयल टिक्का राइस और स्पेशल वेज स्टार्टर्स। सबके लिए कुछ न कुछ है। 62-64 बेलग्रेव रोड LE4।

0: 5AS पर। चाहे डाइन इन करो, टेक अवे लो या ऊबर ईट्स और डिलीवरू से मंगवाओ, कॉल कीजिए 0116 332 5100। एग जंक्शन जो वेम्बली और किंग्सबरी में तो है, अब लेस्टर में, जहां हर बाइट है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी।
1: When you notice something wrong, it tends to grow and eventually take over, to the point you can't really think of anything else. If something in your body doesn't feel right, the thought it could be cancer can play on your mind. Tests could put your mind at rest. Finding out sooner is always better. Your NHS wants to see you. Contact your GP practice.
2: When you go abroad, everyone knows the best way to make yourself understood is to say everything in English, but louder.
3: Four beers, please, garçon!
2: Just like when you amplify your advertising with radio. 40 million listeners every week get the message. See radio differently at radiocentre.org.
4: का वीकेंड और भी सुहाना द रितु शर्मा शो में एवरी वीकेंड 10 AM टू 1 PM ऑन लाइका गोल्ड रेडियो, लाइका रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर एंड लाइका रेडियो मिडलैंड्स पर।

जिसे देखो दिल की धुनी रमाता। अरे ये मंदिर नहीं है, शिवाला नहीं है, हसीनों से कह दो कहीं और जाएं, मेरा दिल है दिल, धर्मशाला नहीं है।

के। हाँ हाँ और सुनो और सुनो। हाँ एक एक परी थी। क्या? एक परी थी, तोता परी। हंसी वो बड़ी थी, हंसी वो बड़ी थी, गगन देश था उसका। क्या? गगन देश था उसका, अजब भेष था उसका। चले रात आगे, चले रात आगे, सुनो सुनो बात आगे, सुनो सुनो सुनो तो, अरे अरे सुनो तो। हाँ।

good morning. वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ एंटरटेनमेंट. स्वागत है आपका मनोरंजन की दुनिया में.

0: मंगलवार वर्ष 2026 के जून महीने की 16 तारीख और वक्त हो गया भाई 10:05 यानी हमारी आपकी मुलाकात का समय। माय नेम इज रवि शर्मा। पहले तो भाई धन्यवाद दें काजल को, शील बी बैक टुमारो मॉर्निंग, नहीं शी वॉन्ट बी, वगैरह मैं नहीं आ रही हूं कल। काजल अगर नहीं आओगी तो मेरी कॉफी कौन लेके आएगा? देखो आप आओ ना आओ मेरी कॉफी जरूर आनी चाहिए, बता दूं आपको। भाई एक काजल है और एक यहां पर खुश है, ये दो लड़कियां बहुत ख्याल रखती हैं शर्मा जी का, थैंक यू वेरी मच। तो साहब काजल फिर फ्राइडे को आएंगी, ठीक है, तब तक उनकी जगह भरने के लिए कोई ना कोई तो स्टाफ में से जरूर आएगा भाई और आपका दिल बहलाएगा। और भाई अगले हफ्ते से रवि शर्मा भी जाएगा क्योंकि छुट्टियों पर सब जा रहे हैं तो हम क्यों ना जाएं, इतना बढ़िया मौसम हो। और भाई इतने सारे बहुत सारे प्यारे प्यारे प्रोग्राम्स हो तो बंदा छुट्टी करने को भाई मचलता है, और अगर छुट्टी ना मिले तो वो बीमार होने से भी नहीं टलता है। हाँ ऐसे में तो कोई बहाना तो चाहिए ना। खैर साहब आपसे मिलना जुलना भी हॉलीडेज से कम नहीं है, तो साहब शुरू करें।
1: Let's return to the biggest hits back to back. This is Leica Radio, broadcasting across the Midlands on DAB Digital Radio with a refreshing mix of Bollywood classics and latest chart toppers. Download the Leica Radio mobile app and listen wherever you are in the world. Leica Radio 90s, Leica Radio Punjabi, Leica Gold 2, now available on the Leica Radio mobile app and Alexa.
0: बांध ले मेरी वफा आंचल में, ये मेरे प्यार की निशानी है, इन लबों से सजा सुना कोई, इन निगाहों से हार मानी है, दिल ने खाई है मात तेरे हुजूर, जान भी अब यही लुटानी है, आजकल का नहीं है ये किस्सा, मेरी दीवानगी पुरानी है, मेरी दीवानगी पुरानी है, मैं पुराना नहीं हूं, सिर्फ दीवानगी पुरानी है।

0: Manoranjan with Ravi Sharma. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रेट्स मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन बैक टू बैक संगीत का एक गीत वहाँ पर रखा अपनी जगह, वो शुरू ही नहीं हुआ, अब होगा, शुरू होगा, लेकिन पहले आप नोट कीजिए आज का रेट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूके कितने पैसे दे रहे हैं एक पाउंड के बदले। वेल दे आर गिविंग 126.45 रुपीज, 126 रुपए और 45 पैसे का रेट चल रहा है। लेकिन इसके साथ साथ भाई जून महीने की वो ऑफर भी साथ है, यानी इफ यू सेंड 1000 पाउंड्स यू नो एक उसमें, तो SBI योनो ऐप के माध्यम से या ब्रांच में जाकर के ये ट्रांसफर करते हैं तो आपके लिए चांस है 75 पाउंड्स का वाउचर जीतने का। एवरीडे दे रहे हैं ये इनाम। इसके अलावा अगर 2000 पाउंड या उससे ज्यादा भेजते हैं तो देर इज अ चांस टू विन 1 ग्राम गोल्ड कॉइन, एंड दिस इज एवरी वीक इज गिवन। तो भाई टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, लेकिन ये ऑफर्स जो है जून के महीने के आखिर तक है, फायदा उठाइए।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
0: बैक टू बैक संगीत से जुड़ा था ये गीत, आशा भोसले, मोहम्मद रफी और साथियों की आवाजें, नौशाद साहब का संगीत और फिल्म भाई दिलीप कुमार वैजयंती माला वाली पुरानी फिल्म।

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: और बहन भाइयों, अभी अभी स्क्रीन पर कुछ उभर के सामने आया है और इसने बताया है कि आज शर्मा जी आपके प्रोग्राम में एक कंपटीशन भी शामिल है। यस, लाइका रेडियो नेटवर्क हैज टीम्ड अप विद एक्सक्लूसिव विद धर्मा प्रोडक्शन फॉर द गुजराती फिल्म जिंदगी वंस मोर, स्टारिंग सिद्धार्थ रेंडेरिया। और भाई ये फिल्म रिलीज हो रही है सिनेमाज में इस वीकेंड पर। वी हैव ए पेयर ऑफ टिकेट्स टू गिव अवे टू स्पेशल इनवाइटी ओनली। और कौन होंगे भाई ये आमंत्रित व्यक्ति जो स्पेशल मेहमान बन के जाएंगे? स्क्रीनिंग हो रही है इस की फिल्म की जिंदगी वंस मोर एट द कोर्ट हाउस होटल नियर लंदन ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट स्टेशन। बहुत बढ़िया भाई जगह है, वहाँ पर आप बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे आप प्राइवेट स्क्रीनिंग चल रही है, आपके लिए कुछ खास लोग ही होंगे। तो द स्क्रीनिंग टेक्स प्लेस दिस थर्सडे 18th of June एट 6 PM। तो इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको क्या करना है, सुन लीजिए ध्यान से। सेंड द वर्ड जिंदगी। ए जिंदगी होता है कि जिंदगी होता है, अरे गुजराती माँ छेना भाई तमें जिंदगी अलग लिखियो, JINDAGI। जिंदगी जेड से होता है लेकिन ये जिंदगी लिखना है आपने, JINDAGI, जिंदगी। ये वर्ड लिख के भेजना है और उसके साथ भाई आपको अपना नाम, फोन नंबर ये सब लिखना मत भूलिएगा। विनर्स विल नीड टू कलेक्ट द टिकेट्स फ्रॉम द वेन्यू ऑन द नाइट ऑफ द स्क्रीनिंग, यानी 18 तारीख को जिस दिन शो है, शाम 6 बजे शो है, तो थोड़ा पहले जाकर के टिकट्स कलेक्ट कीजिएगा और फिर मजा लीजिएगा फिल्म का। द टिकट्स कैन नॉट बी एक्सचेंज्ड विद एनी अदर स्क्रीनिंग और फिल्म। तो भाई मैं आपको बता दूं फिर से, आपको अपना नाम और अपना फोन नंबर लिखना है और ये सिर्फ इसलिए आपके आईडी पर्पस के लिए चाहिए। तो ये दो चीजें और साथ में जिंदगी, नॉट जिंदगी, जिंदगी लिखना है आपने, JINDAGI। तो पार्टिसिपेशन आपका हो जाएगा और विनर का नाम मैं इसी कार्यक्रम में आगे चल करके अनाउंस करूंगा। ऑल द बेस्ट। समय हो गया है खबरों का, लेट्स सी व्हाट इज इन द न्यूज टुडे।
0: मनोरंजन विद रवि शर्मा,
2: लाइका रेडियो नेटवर्क। अब आप रवि शर्मा से आज के खास खास समाचार सुनिए। पहले तो चर्चा करें फुटबॉल कप की। ईरानी टीम के कोच कह रहे हैं भाई मैक्सिको के प्रशंसकों ने, फुटबॉल फैंस ने हमें अलग थलग महसूस नहीं होने दिया। यानी वो जो घटनाएं पिछले कई दिनों से घट रही हैं उनका असर जो है कहते हैं हमें महसूस नहीं हुआ। ईरान की फुटबॉल टीम के जो चीफ कोच हैं उन्होंने कहा, अमीर गोल नहीं उनका नाम है, उन्होंने कहा कि फीफा वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड से मैच के बाद मुकाबले के दौरान मैक्सिकन लोगों ने ईरानी टीम को बिल्कुल भी अलग थलग महसूस नहीं होने दिया, पूरी सपोर्ट मिली, प्यार मिला। ईरानी कोच ने मैच के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमेरिका की ओर से उनकी टीम के अमेरिकी जमीन पर रहने को लेकर लगाई गई समय सीमा का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हमें माहौल में ढलने के लिए 2 हफ्ते पहले आने की इजाजत नहीं दी गई और अब आराम करने के बजाय उन्होंने कहा कि हमें यहां से जाना होगा। ईरानी टीम को अमेरिका छोड़ने से जुड़े सवाल के जवाब में गालिनोई ने कहा कि ईरानी टीम वर्ल्ड कप के इतिहास में शायद ऐसी टीम है जिसका सबसे अधिक उत्पीड़न किया गया, टॉर्चर किया गया, परेशान किया गया। और अब देखते हैं भारत से आने वाली खबरों में। भारत में पंजाब में एक मसला खड़ा हो गया है। भगवंत मान को अकाल तख्त की ओर से खालसा पंथ का विरोधी करार दिया गया है। क्या कह रहे हैं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, उनका रिएक्शन आया है। उन्होंने कहा कि धर्म का इस्तेमाल करके उन्हें बदनाम किया जा रहा है। मंगलवार को एक वीडियो जारी करके आज सुबह सुबह मान ने कहा कि जब मुझे अकाल तख्त साहब की ओर से बुलाया गया वहां भी मैं यही कह के आया हूं कि इस वीडियो में भाई मैं नहीं हूं। असल में क्या है कि वीडियो में कोई ऐसी हरकत की गई है जो भाई सही नहीं है, जो एक गलत एक्ट है और उसकी तो नेचुरली बदनामी हो रही है, पर मान साहब कह रहे हैं कि ये मैं नहीं हूं। जो बंदा उस वीडियो में है वो ना तो मेरी कद काठी का है, ना ही मेरे शरीर की बनावट उससे मिलती है, पर मैं हैरान हूँ कि इतने बड़े धार्मिक ओहदे पर बैठे लोग अपनी सियासी हुक्मरानों की सह पर इस तरह का झूठा प्रोपगंडा कर रहे हैं और मुझे बदनाम करने के लिए सब किया जा रहा है। अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस ने कहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ युद्ध खत्म करने के लिए हुए प्रारंभिक समझौते को शुक्रवार से पहले पब्लिक करने का फैसला कर सकते हैं। इससे पहले ट्रंप कह चुके हैं कि समझौते पर पहले ही हस्ताक्षर हो चुके हैं। वेंस ने अमेरिका और ईरान के बीच हुए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को करीब डेढ़ पन्ने का एक बहुत ही सामान्य डॉक्यूमेंट बताया है। अमेरिका के सीनियर अफसरान ने भी ये समझौते से जुड़ी कुछ जानकारी साझा करनी शुरू कर दी है। उन्होंने बताया है कि शुक्रवार 19 जून को हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोल दिया जाएगा और इसी दिन जिनेवा में इस समझौते पर औपचारिक रूप से यानी फॉर्मली दस्तखत किए जाएंगे। ये घटनाक्रम ऐसे वक्त में आया है जब ट्रंप फ्रांस में ऑर्गेनाइज्ड G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। भारत से आने वाली खबरों में शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और पार्टी के स्पोक्स पर्सन संजय राउत ने उन रिपोर्ट्स को खारिज कर दिया है जिनमें पार्टी में टूट के दावे किए गए थे। आज सुबह सुबह संजय राउत का एक बयान आया है। उन्होंने कहा कि पार्टी के सभी 9 मेंबर पार्लियामेंट जो है वो उद्धव ठाकरे के साथ हैं। ये सरासर झूठ है कि भाई वो हमारे पास नहीं है, उनकी जानकारी हमारे पास नहीं है। 4 दिन पहले ये सभी सांसद शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे जी से मीटिंग बुलाई थी, उसमें शामिल हुए थे और हमें उन पर विश्वास है और उन्हें अपनी पार्टी पर विश्वास है। फीफा वर्ल्ड कप मैच में भाई पहला मैच जो है, दूसरे मैचों के नतीजे भी आपको बता दें। वैसे तो हम हर घंटे बता रहे हैं, फीफा वर्ल्ड कप के ग्रुप जी में ईरान और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया मुकाबला ड्रॉ पर खत्म हुआ है। दोनों ही टीमों ने 2-2 गोल दागे। मैच में ईरान ने 2 बार पिछड़ने के बाद वापसी की और ईरान के लिए रामिन रेजाइन और मोहम्मद मोहबी ने 1-1 गोल किया। आज के मुकाबले की जानकारी आगे चलकर हम आपको देंगे। ईरान और अमेरिका के समझौते के ऐलान के बाद लेबनान के जो लोग विस्थापित हो गए थे, जो अपने घरों से उजड़कर गए थे, वो अब अपने घरों की ओर लौट रहे हैं। हालांकि अमेरिकी अधिकारियों की ओर से बाद में आए बयान में कहा गया है कि लेबनान इस समझौते का हिस्सा नहीं है। वहीं इसराइल की ओर से कहा गया है कि उसकी फौज दक्षिणी लेबनान से पीछे नहीं हटेगी। पर इसी बीच बड़ी संख्या में लेबनान के लोग अपने घरों की ओर लौटने लगे हैं। हालांकि अधिकारियों ने वार्निंग दी है कि हालात अभी तक पूरी तरह से सिक्योर नहीं है, सुरक्षित नहीं है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने कहा है कि देश के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खोमनई ने अमेरिका के साथ समझौते में देश के राष्ट्रीय इंटरेस्ट की रक्षा करने वाले प्रावधानों को शामिल कराने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। यानी उन्होंने अपने मतलब की बातें इसमें शामिल करवाई हैं, देश के मतलब की बातें। पर नेतान्याहू कह रहे हैं कि भाई अमेरिका ईरान समझौते के बाद भी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने इसराइल को पूरी तरह तबाह होने से बचा लिया है, लेकिन लड़ाई अभी जारी है। उन्होंने ये भी कहा कि इसराइल को सतर्क रहना होगा, जागरूक रहना होगा और जरूरत पड़ने पर अपनी रक्षा और अपना बचाव करना होगा। भाई फीफा वर्ल्ड में एक खिलाड़ी की बड़ी चर्चा हो रही है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में ईरान और न्यूजीलैंड के बीच जो उत्तरी अमेरिका के समय के अनुसार लीग मुकाबला खेला गया, दोनों ही टीमें ग्रुप जी का हिस्सा हैं। इसमें एक खिलाड़ी भारतीय मूल का है, सरप्रीत सिंह, उसे मौका मिला है। और भाई सरप्रीत सिंह के खेलने की खबर सुन करके उनके जानने वाले भारतीय और पंजाबी बड़े उत्साहित हैं। दक्षिणी कैलिफोर्निया में एडवर्ड्स एयरफोर्स बेस से उड़ान भरने के तुरंत बाद अमेरिकी एयरफोर्स का एक B-52 बॉम्बर प्लेन क्रैश हो गया है, जिसमें 8 लोगों की मौत की खबर आ रही है। यह हादसा कल सोमवार को लोकल वक्त के अनुसार सुबह 11:20 पर हुआ, जब हवाई जहाज ये विमान एक रूटीन टेस्ट मिशन पर था। हादसे के बाद आसमान में काले धुएं का एक बड़ा गुब्बार उठा, जिसे मीलों दूर तक देखा गया। और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर कहा है कि इजराइल और ईरान युद्ध को खत्म करने के लिए एक प्रारंभिक समझौते पर दस्तखत कर चुके हैं और इस समझौते का ब्यौरा बहुत जल्द सामने आ जाएगा। ये थे आज के प्रमुख समाचार। समाचार समाप्त होते हैं। भाई वो जो कंपटीशन हमने शुरू किया उसके लिए शायद मैंने नंबर नहीं बताया था, मैं फिर बता दूं। वैसे अब बताने की जरूरत नहीं क्योंकि हमारे कंपटीशन का नंबर इतने बार दोहराया जा चुका, सब जानते हैं कि कहां पर जानकारी भेजनी है। आपने अपना नाम, फोन नंबर लिख करके और जिंदगी शब्द लिख करके भेजना है। उस फिल्म के टिकट्स के लिए कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेना चाहते हैं तो किस नंबर पे 07424232323। ये मैं वैसे ही बोल रहा हूँ, मैंने कहीं लिखा हुआ नहीं देखा, मुझे भी जबानी याद हो चुका है तो आपको क्यों नहीं याद होगा। भाई आप जानते हैं मेरी तो मेमोरी जो है वो खाली मेमोरी तो रही नहीं, अब खाली मोरी रह गई है, पर यादाश्त अच्छी है। ये नंबर सबको याद हो चुका, कंठस्थ तो कई तो इसको कई बार कर भी चुके हैं इस्तेमाल। तो भाई 07424232323 पर जिंदगी लिखिए, बहुतों ने लिख के भेज भी दिया है, अपना नाम और फोन नंबर भी लिखा है। और सुनते रहिएगा प्रोग्राम, मैं बताऊंगा कि किसके हिस्से में ये फिल्म का भाई शो देखना जो है लिखा है, तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ। कुछ और भी सूचनाएं हमारे पास हैं आपके साथ साझा करने के लिए, और उनमें एक ये है कि लाइका रेडियो नेटवर्क हैज टीम्ड अप विद एक्सक्लूसिवली, ये तो वो धर्मा प्रोडक्शन वाली जानकारी मैं दे चुका हूं आपको। फिल्म जिंदगी का कॉम्पिटिशन चल रहा है। एक और जानकारी थी ये वाली, और ये है तारिक हलाल की ओर से। लाइका रेडियो नेटवर्क टीम्स अप विद तारिक हलाल फॉर द ओपनिंग ऑफ देयर न्यू रेनर्स लेन ब्रांच ऑन वेंसडे, यानी कल 17 जून को। और ये कहाँ खुल रही है? 297 रेनर्स लेन पिनर में। भाई फर्स्ट 100 कस्टमर्स विल हैव द चांस टू क्लेम अ गोल्डन टिकट ऑन अ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। स्पेंड £1 भी खर्च करेंगे तो अभी आपको £50 वर्थ फूड जो है कि आइटम्स हैं वो आपको मिलेंगे। TNC अप्लाई। लाइका रेडियो नेटवर्क विल ऑल्सो बी ब्रॉडकास्टिंग लाइव फ्रॉम देयर फ्रॉम 10 AM अंटिल 1 PM।
0: दिस इज द लाइका रेडियो नेटवर्क अक्रॉस लंदन, मैनचेस्टर एंड द मिडलैंड्स। टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स।
2: अमित अंकल,
3: रंग बरसे,
2: ये आज भी बरसाएगी, होली का गीत है।
3: चुनर वाली रंग बरसे,
2: बरसाओ बरसाओ, भिगाओ रंग वाली। ओके, हमारा क्या जाता है।

होली नहीं है आज, पर रंग बरसा रहे हैं अमित अंकल, तो भीगना पड़ेगा। हो जाओ शुरू अंकल।

स्वागत है आपका मनोरंजन कार्यक्रम के दूसरे दौर में। चिंतन से शुरुआत करते हैं हम। माय नेम इज रवि शर्मा, लाइका गोल्ड पर मनोरंजन प्रोग्राम लेकर मैं दोपहर बाद 1 बजे तक हाजिर हूं, लेकिन 11 बजे की खबरों के बाद यह पड़ाव आता है जो अपने साथ एक विचार लाता है। थॉट फॉर द डे, आज का विचार, आज का चिंतन। और आज का चिंतन हम दलजीत जी और तिलाश जी की ओर से समर्पित करना चाहते हैं स्वर्गीय श्री बालकृष्ण शौनक जी को। बालकृष्ण जी का पिछले दिनों निधन हुआ। अब उनके परिवार वालों ने बड़ी श्रद्धा के साथ उनकी छमाई और बरसी बड़ी निष्ठापूर्वक संपन्न की। अतिलाश जी और दलजीत जी और उनका सारा परिवार, विशेषकर बालकृष्ण जी की धर्मपत्नी श्रीमती संतोष शौनक जी ने पूजा पाठ यज्ञ हवन के द्वारा उन्हें श्रद्धांजलि दी, याद किया, उनके लिए पूजा पाठ किया। लेकिन साहब, एक सवाल जो अक्सर लोगों के दिमाग में आता है जब कोई अपना बिछड़ जाता है, ऐसा लगता है जैसे शरीर का हिस्सा कोई कटकर अलग हुआ है। तकलीफ होती है, दर्द बहुत देर तक रहता है, जाने वाले कभी लौट कर नहीं आते और जाने वालों की यादें कहीं नहीं जाती, हमेशा दिल में बसी रहती हैं। ऐसे में एक प्रश्न उठता है। शास्त्र कहते हैं कि जब कोई अपना बिछड़ता है ना, तो शरीर 5 तत्वों से बना है और 5ों तत्व जो है वो अपने अपने सोर्स में लौट जाते हैं। अग्नि अग्नि में, वायु वायु में, जल जल में, पृथ्वी पृथ्वी में, और आकाश यानी खाली स्थान व्यापक हो जाता है आकाश में। परंतु ये तो शरीर के तत्व है ना, इस शरीर को चलाने वाला आत्मा कहां जाता है? ये सवाल कईयों के मन में उठता है। शरीर के 5ों तत्व अपने सोर्स में लौट जाते हैं तो आत्मा, रूह, स्पिरिट कहां जाती है? तो शास्त्रों से जवाब मिलता है, जहां से आती है, क्योंकि वो मिटती तो है नहीं। मिटती तो कोई भी चीज नहीं है, ये साइंस का कहना है और यही सनातन पद्धति का कहना है। यू कैन नॉट क्रिएट और डिस्ट्रॉय एनीथिंग, थिंग्स डू चेंज शेप। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को मिलाते हैं तो पानी बनता है, आपने क्रिएट नहीं किया है पानी। अब शरीर का निर्माण होता है, फिर उसका विघटन होता है, फिर आत्मा कैसे बनता है, कहां जाता है, ये सवाल उठता है। तो कहते इस पर विचार हुआ, आत्मा परमात्मा से आता है और परमात्मा में ही लौट जाता है। परमात्मा कभी नहीं मरता, ईश्वर शाश्वत है तो आत्मा भी शाश्वत है। अब साहब, ये सवाल उठाकर जवाब ढूंढते ढूंढते हम आ गए इस मोड़ पर कि हम जब भी किसी पुण्य आत्मा की, दिवंगत आत्मा की समर्पित करते हैं, उनकी छमाई पर, बरसी पर उन्हें याद करते हैं, तो उन्हें घटाकर क्यों करते हैं? क्योंकि आत्मा जब परमात्मा में विलीन हो जाती है तो परमात्मा अपने बच्चों को कभी भी उदास, परेशान, रोते हुए, मोह में तड़पते हुए नहीं देखना चाहता, वो उन्हें खुश देखना चाहता है। हमारे पितृ, हमारे पूर्वज भी जब ईश्वर में विलीन होते हैं तो ये कामना करते हैं कि परिवार वालों रो मत, मैं ईश्वर में मिला हूं, जब कभी भी आप ईश्वर की अनुभूति करेंगे वो मैं ही हूं, उसमें विलीन हूं। संत महात्माओं के विषय में तो कहते हैं कि वो ब्रह्मलीन हो गए, मृतक नहीं कहते हैं। हर आत्मा परमात्मा में जाके विलीन होती है तो वो खुश है, वो प्रसन्न है, वो ईश्वर के पार्ट है। और आपसे कहते हैं कि आप भी अब मॉर्निंग पीरियड को समाप्त करके लुक फॉरवर्ड, जीकर दिखाओ, खुश रह के दिखाओ, सेलिब्रेशन करो, बहुत देर तक मॉर्निंग ना करो, शोक में समय मत बिताओ। और इसलिए आप देखेंगे कि सनातन पद्धति में
हर काम घटा के किया जाता है, यानी 13वीं करेंगे तो 11वें दिन पर कर देंगे, 12वें दिन पर कम करके करेंगे, छमाई करेंगे तो कम करके करेंगे, बरसी करेंगे तो 11वें महीने में कर देंगे 12 महीने की बजाय, और भी कम कर सके तो छोटा करो, गम के पीरियड को छोटा करो और आगे देखो खुशियों की ओर, आगे देखो जीवन की ओर, मृत्यु को भुला दो, क्योंकि मृत्यु कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, वो ईश्वर में विलीन हुए हैं। अब भाई सवाल का जवाब ढूंढते ढूंढते हम आ गए इस मोड़ पर जहां एहसास होता है कि आत्मा कहां जाता है, दुनिया से जाने वाले कहां जाते हैं, कहां ढूंढे उन्हें, कहां मिले उनसे, ईश्वर में।

0: जाने है वो कौन डगरिया, आए जाए खतना खबरिया। ईश्वर सर्वव्यापक है, सर्वत्र है, सर्वज्ञ है, और हर आत्मा उसी परमात्मा का स्वरूप है, उसमें विलीन होती है, वहीं से आती है। अभी जो गीत आप सुन रहे थे स्वर्गीय मुकेश जी के स्वर में, दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ, जवाब मिला, पुष्पांजलि फिल्म का गीत था। और भाई ये गीत और ये आज का चिंतन समर्पित स्वर्गीय बालकृष्ण शौनक जी को, उनके भाई दलजीत शौनक और उनकी भाभी तिलाश की ओर से उन्हें समर्पित, उनकी धर्मपत्नी बालकृष्ण जी की, संतोष शौनक जी ने चाहा था कि भाई आज का चिंतन उनके पूज्य पति देव को समर्पित किया जाए। चिंतन के लिए तिलाश और दलजीत का धन्यवाद और श्रद्धांजलि उनके सुपुत्र भरत और पुत्र वधु सविता की ओर से, बेटी संगीता और दामाद सुनील की ओर से, गौरव और देवेन की ओर से, साक्षी और संजना की ओर से, यानी सारे शौनक परिवार की ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि उन्हें समर्पित। और इसके साथ ही भाई संदेश के लुक फॉरवर्ड नाउ, घर में परिवार में अब मॉर्निंग पीरियड को कंप्लीटली समाप्त करके अपने पितरों की प्रसन्नता के लिए, उस ईश्वर की खुशी के लिए, अब खुशियों में आप देखें आगे, लुक फॉरवर्ड, डू सेलिब्रेशन, अच्छे समय का रास्ता देखें और अपने जीवन में लाएं, मुस्कुराएं, हंसें और बताएं उन्हें कि हम आपके आशीर्वाद से खुश हैं, प्रसन्न हैं। अब आज का चिंतन, आज का विचार है ना भाइयों, एक संदेश कि हमारे पितर तभी खुश होते जब हम खुश रहें। समाप्त करते हैं चिंतन हर रोज मंडे टू फ्राइडे 11 बजे के खबरों के बाद, मनोरंजन प्रोग्राम में शामिल किया जाता है, चिंतन समाप्त होता है।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: State Bank of India UK याद दिला रहे हैं भाई, पैसे भिजवाना चाहते हैं तो रेट अच्छा चल रहा है आजकल। For £1 they are giving 126.45 rupees भारतीय करेंसी में, भारतीय मुद्रा में। लेकिन भाई इसके साथ साथ कुछ और भी है, ये पैसे आप अगर उनके योनो ऐप के माध्यम से या उनकी ब्रांच में जाकर के भिजवाते हैं, और अगर राशि £1,000 से ज्यादा है तो देर इज ए चांस टू विन ए £75 वाउचर एवरी डे। यस एंड देर इज समथिंग मोर, 1 ग्राम गोल्ड कॉइन एवरी वीक इफ यू सेंड ओवर £2,000। TNC अप्लाई।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. This is Leica Radio.
2: Leica Radio.
1: Football score updates brought to you by Rack Law Solicitors, specialists of immigration law, wills and probate, family law, personal injury and other legal requirements.
0: वर्ल्ड कप फुटबॉल का जिक्र कर रहे हैं भाई, अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में ये बहुत बड़ा आयोजन चल रहा है, और इस आयोजन में भाई रोज कई कई मैच होते हैं, हमारे से तो हिसाब किताब रखना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन आपको बता दें कि फीफा वर्ल्ड कप का ईरान का पहला मैच ड्रॉ रहा, दूसरे मैच के नतीजे सामने आ रहे हैं। आज जो मैच खेले जाने हैं उनका जिक्र करें तो आज के मैच की एक तो ये भी बात है कि भाई समय का जो फर्क है उसमें हमारे यहाँ जो आज होता है उनके अभी होता तो आज है, लेकिन कई बार उनका अगला दिन शुरू हो जाता है, हम रात में सोए हुए होते हैं और वो नेक्स्ट डे में काउंट होता है। वेल फिलहाल मैं आपको बता दूं कि आज होने वाले जो मैचेस हैं उनमें कौन सा है, लीजिए साहब, लगता है कि कहां पर है, ईरान और न्यूजीलैंड के बीच जो है कल हुआ था मुकाबला, उसमें सबसे ज्यादा चर्चा ग्रुप एच में स्पेन और काबो वर्दी के मैच की रही थी। काबो वर्दी की टीम पहली बार फीफा वर्ल्ड कप टूर्नामेंट का हिस्सा बनी है, जबकि स्पेन एक बार फीफा का चैंपियन भी रह चुका है। उसके बावजूद शानदार प्रदर्शन भाई, काबो वर्दी का मैच 0-0 से बराबरी पर खत्म किया। और साहब आज के मैच की बात करें तो आज जो मैच होने हैं वो फ्रांस वर्सेस सेनेगल और इराक वर्सेस नॉर्वे। भाई शाम 8 बजे फ्रांस वाला मैच है और इराक नॉर्वे का रात 11 बजे ये मैच होगा, यहाँ के समय के अनुसार मैं बता रहा हूँ। और स्कोर से हम आपको जोड़े रखेंगे क्या होता है मैदान में, जुड़े रहिएगा आप हमारे साथ। लेकिन इसके अलावा भाई एक और जानकारी हम आप तक पहुँचाना चाहते हैं कि अगर आप हमारे जो स्पॉन्सर हैं फुटबॉल मैचेस के बारे में जो ये जानकारी भिजवा रहे हैं, डोंट फॉरगेट यू कैन गेट योर 15 मिनट्स फ्री लीगल एडवाइस विद आवर स्पॉन्सर्स रैक लॉ इफ यू मेंशन लाइका।
1: दिस अपडेट वाज स्पॉन्सर्ड बाय रैक लॉ सॉलिसिटर्स, कॉल 0203-345-2000 और विजिट raklaw.co.uk। ये है लाइका रेडियो।
3: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
4: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
3: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
4: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
3: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
4: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
3: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorized by the PRA and regulated by the FCNPRA.
5: Location, location, location.
6: In real estate, location is everything, and this one is a villa.
5: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
6: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
5: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
6: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
5: And the best part, townhouses and villas greens start from just £711,000.
6: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danu. Prime location,
5: high appreciation
6: in Dubai.
7: Surrenderella is back for 2026. Beck Theatre Hayes, 22nd and 23rd of July. Arts Depot Barnet, 17th and 18th of October. Theatre Royal Stratford East, 20th to the 31st of October. With smash hit music by the hitmaker PBN, Surrenderella is guaranteed dizzy panto fun for all the family. And with tickets starting from £15, click rifcotheatre.com and be sure to book before the clock strikes midnight. Surrenderella goes back into the Bollywoods. Radio partner, Leica Radio.

0: नीले गगन तले प्यार हम करें। बादशाह था फिल्म का नाम भाई, 1954 में आई थी और उस जमाने में ऐसे गीत बनते थे। हेमंत कुमार का स्वर भाई इसमें शामिल था। और आपको बता दें कि हेमंत दा अगर आज दुनिया में होते ना तो अपना जन्मदिन मना रहे होते, June 16, 1920, दैट वॉज द डेट टाइम ईयर भाई। बनारस में उनका जन्म हुआ था, वाराणसी जो शहर है, काशी जी जिसको कहते हैं। और भाई हेमंत दा की स्मृति में एक डाक टिकट भी जारी हुआ था। और संगीत के क्षेत्र में उनका योगदान वैसे तो पूरी फिल्मी दुनिया में, भाई उनके परिवार के और लोग भी जो हैं वो फिल्मों में बड़े एक्टिव हैं। कई जो है एक्टर्स और म्यूजिक से जुड़े लोग जो हैं वो फिल्मों में योगदान दे रहे हैं, पर हेमंत दा को हम याद करते हैं, आज उनका जन्मदिन पड़ता है। और भाई जन्मदिन तो और भी बहुत सारे लोगों का आज है, हमारे श्रोताओं में अगर किसी का है तो मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। एंड आज इम्तियाज अली एक डायरेक्टर है, उनकी फिल्म भी आने वाली है ना, वो लौट के आऊंगा समथिंग भाई, वो भी आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं। 1971 में जन्मे थे 16 जून को। और किसका जन्मदिन है आज है ना, एक भाई जाने वाने वो पॉलिटिशियन भी हैं आजकल तो, और हीरो भी रहे हैं अपने जमाने में, कौन है वो सुनवाते इस गीत में, फिर आप पहचानने की कोशिश कीजिएगा। Feel good track brought to you by Dairy Valley. Soft and tender like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net. हाँ तो दादा मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, सबको बता दीजिए कौन है आप?
1: कौन हो तुम?
2: आई एम कृष्णन अय्यर यम ये
1: यम ये
2: यम यम यम ये भाई ने मेरे को भेजा तुम्हारा बॉडी का गार्ड करने के लिए।
1: बॉडी गार्ड?
2: यस।
1: वाओ चिकना है।
3: शिक्षा ही सोच यू
1: शाहब।
0: दादा लड़कियां इंसल्ट कर रही हैं।
1: कृष्ण आयर यम ये।
4: कैन यू सिंग? कैन यू डांस? कैन यू डिस्को?
0: दादा इज्जत का सवाल है, कुछ करो। और कुछ नहीं तो उनको झाड़ दो, डांट दो। तो बंगाल में आपकी सरकार भी आ गई है। नहीं बोलेगा, नहीं बोलेगा दादा, कुछ बोलेगा नहीं भाई। दादा कुछ तो बोलना पड़ेगा, बोलिए बोलिए बोलिए, कुछ बोलिए।

0: मस्ती करते तो मेरे का मजा करते, मेरा साउथ का मजा करती है। देख आज मैं लूंगे उठा का तुमको डिस्को नारियल दिखाएगी। अच्छा बात कर रहा
1: दादा, लुंगी उठा के नहीं, लुंगी गिरा के।

0: सबकी घंटी बज जाती है। आई एम कृष्णन अय्यर यम्मे, आई एम नारियल पानी वाला, नहीं नहीं कृष्णन अय्यर,
1: नारियल पानी वाले भाई ये कर्नाटक के नहीं है, बंगाली बाबू है लेकिन कृष्ण भैया हमारे देशराज भाई कहते हैं कि प्रोड्यूसर डायरेक्टर इम्तियाज अली तो 51 बरस के हुए लेकिन मिथुन दा तो मिथुन दा यकीन नहीं आ रहा है, 76 के हो गए हैं मिथुन चक्रवर्ती, आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं भाई। ये गीत उन पर पिक्चराइज था, आज भी याद है लोगों को उनकी मस्ती, उनका डिस्को लुंगी उठा के। भाई मिथुन दा 76 के हो गए हैं, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, क्योंकि अब वो सिर्फ अभिनेता नहीं है, अब वो नेता भी हैं। बंगाल में भाई भारतीय जनता पार्टी के बड़े प्रतिष्ठित प्रचारक रहे वो, और अब तो चुनाव जीत गई है उनकी पार्टी, लेकिन कोई मंत्री वंत्री बनाए गए कि नहीं पता नहीं भाई, मालूम नहीं पॉलिटिक्स में कब कहाँ किसकी जो है वो स्थिति बन जाती है, लेकिन बहुत क्या करेंगे भाई मुखर वो पॉलिटिशियन रहे, चुनाव में उनके बयान बड़े जोर शोर से छपते रहे और उन्होंने अपनी पार्टी को जीत दिलाई। मिथुन चक्रवर्ती 76 ओल्ड टुडे, भाई उनके बारे में ज्यादा जानकारी तो बाले भाई लेके आएंगे, सभी के बारे में हम तो एक गीत बजा करके हैप्पी बर्थडे कह देते हैं, लेकिन बहुत सारा मसाला वो जुटा रहे हैं ऑलरेडी, तो बाले भाई लेकर के आ रहे हैं। दैट वॉज द सॉन्ग टू द हैप्पी बर्थडे बॉय।
2: फील गुड ट्रैक brought to you by Dairy Valley.
3: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
4: Manoranjan with Ravi Sharma.
5: Mica Radio.
6: Mica Extra is here. Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive. This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
1: Leica Extra में बता दें भाई आपको हमारा नया एपिसोड जो है वो आ गया है, hosted by अनुज राडिया, Bollywood Rewind. अब साहब बॉलीवुड में कितने परिवर्तन आए पिछले कई वर्षों में, वो पुराने वाले हीरोज की जगह नए नए एक्टर भी आने लगे, और क्या कुछ स्क्रिप्ट में म्यूजिक में कुछ थोड़ी बहुत चेंजेस आपने महसूस किए, बहुत सारी बातें आपको जानने को मिलेंगी। Leica Extra पॉडकास्ट अवेलेबल ऑन Spotify, YouTube, Amazon, Apple एंड अदर मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म।
7: Citybound Travel proudly presents Yatra Tours 2026.
8: Discover Kailash Mansarovar, Chardham, Amarnath, Sri Lanka with Ayodhya, Ayodhya with Kashi, the Golden Temple Amritsar and more.
7: Book before the 31st of October and get £150 off Kailash or £100 of any other Yatra tour.
8: Also explore 2026 cruises
7: from Alaska to the Caribbean, the Mediterranean, Japan and Korea. Visit us at 5 Melton Road, Leicester, or call Citybond Travel on 01162 167 225. We're at all protected.
9: Father son no bond jitlo special che itli j special film aavi rahi che.
10: Uncle tame pehla thi aawaz chho
11: aava etle keva.
9: Dharma Productions presents Zindagi Once More.
11: Maro baap banvani koshish kar tu બુદ્ધિ વેચી આવ્યો છે તું? અરે જિંદગી એવી મોજ થી જીવજે કે જિંદગી ખુદ તને આવી ન પૂછે.
9: આ ફાધર્સ ડે ફીલ ધ ઇમોશન્સ, લવ એન્ડ ફેમિલી મોમેન્ટ્સ વિથ જિંદગી વન્સ મોર ઇન સિનેમાઝ ઓન 19 જૂન. ફોર મોર ઇન્ફોર્મેશન વિઝિટ બકરાનિયા મીડિયા ઓન ઇન્સ્ટાગ્રામ.
11: તો થઈ જાય જિંદગી વન્સ મોર.
3: Celebrate Father's Day on Sunday, 21st of June in Ambala style. Ambala Sweets has been bringing families together through taste and tradition since 1965. Freshly made, beautifully presented and perfect for the dad who deserves the very best. Classic laddus, habsi halwa or an assorted mithai selection. Make his day extra special with a gift from Ambala. Order online today at ambala.co.uk and celebrate Father's Day in Ambala. Bala style.
12: Be part of a historic grand opening.
3: Experience the newly inaugurated BAPS Swaminarayan Mandir in Paris. A once-in-a-lifetime spiritual journey.
12: Travel with your family and witness this divine occasion along with the Eiffel Tower, Seine River Cruise and a Paris City Tour.
3: Departure 5th of September. Call now on 02-03-773-633.
12: Mantra Holidays. What's your travel mantra?
13: Pepe's Piri Piri is firing up its 258th store at Three Tons Parade on Stafford Road, Wolverhampton. Get ready for flame-grilled chicken, mouth-watering burgers, wraps, rice boxes, and the bold Pepe's flavor you love. Now serving at Wolverhampton Three Tons Parade. Pepe's Piri Piri. Taste the flame.
6: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. Missed your favourite show on Leica Radio Midlands? You can now listen back at leicaradio.com. It could be breakfast with Kajal, drive with Raj Vadhan, the legendary presenters Ravi Sharma, Bali Brambat, or the energetic Radio Wally. Listen back wherever you are by logging on to leicaradio.com and the Leica Radio mobile app, available in all iOS and Android stores. Download the app for free and listen to Leica Radio Midlands when you want. Leica Radio Midlands is a part of the number one Asian commercial network. The Leica Group. Home of Leica Radio and Leica Gold.
14: Leica Radio.
15: Pepe's, famous for flame-grilled marinated chicken, with over 215 stores nationally. Download the Pepe's app, where you can choose to have your order collected or delivered. Delivery is available in selected stores. Every first order on the Pepe's app, customers receive a 10% discount. Plus, a chance to spin to win some fantastic prizes. Order at Pepe's today.
16: Bollywood's biggest 90s songs, non-stop.

लौट आइए संगीत की ओर, एंजॉय कीजिए ये गीत किशोर कुमार और लता मंगेशकर के स्वर जब मिलते हैं, इस तरह के गीत बनते हैं।

0: याद दिला दूं अपने श्रोताओं को, भाई कंपटीशन अभी भी चल रहा है, वो जिंदगी वर्ड लिख करके भेजना है, स्पेलिंग गलत ही लिखनी है आपको, गलत नहीं है वो, गुजराती में जिंदगी ही बोला जाता होगा, जिंदगी नहीं, तो आप वो लिख करके भेजिए। फिल्म के दो टिकट से इंतजार कर रहे हैं, किसके हिस्से में जाएंगे, कोर्ट हाउस में 18 तारीख को फिल्म दिखाई जाएगी भाई, ये बढ़िया होटल में प्राइवेट सिनेमा हॉल है, अच्छा लगेगा आपको वहां पर जाकर के सिनेमा देख करके। तो कीप सेंडिंग योर एंट्रीज 07424232323 पर, रिजल्ट अगले घंटे में निकलने वाला है।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: और भाई आपको बता दूं, रेट्स जो है LemFi के, एक पाउंड के बदले दे आर गिविंग इन इंडियन करेंसी 126.88 रुपीज।

0: सिर्फ दो घूंट पीनी है और बाकी मेरे ते रोड़ दिया, वेस्ट करने से क्या फायदा ये बताओ। बाकी मेरे ते रोड़ दे, मेरे ऊपर बखेर दे, बाकी खिंडा दे मेरे ऊपर। देखिए साहब दारू, अब मैं तो ठीक है, मैं तो शरीफ आदमी हूँ खैर, लेकिन आप ये बताओ वेस्ट करके क्या मिलेगा। हाँ, दो कोट पिला दे साकी, अब बाकी मेरी थी रोड दे, हाँ, बोतल खाली कर दे मेरे ऊपर, तो नहाएगा इसमें यार के पिएगा। नरेंद्र चंचल की आवाज में साहब ये गीत आपने सुना और बड़ा नशीला गीत था। बैक टू बैक संगीत के तहत दो गीत हमने परोसे आपको और मुझे पूरा यकीन है दोनों आपको पसंद आएंगे। पहला गीत था लता जी और मोहम्मद रफी, वह आनंद बख्शी की आवाज में, आनंद बख्शी की आवाज भाई उसमें शामिल थी गीत में, एंड दैट वॉज टेकन फ्रॉम द फिल्म चरस। और ये गीत जो अभी आपने सुना ये काला सूरज से लिया गया था। राइट, डोंट फॉरगेट टू डू द एंट्री। भाई मैं अभी थोड़ी देर में रिजल्ट बताने वाला हूँ कौन जाएंगे, वो जो फिल्म है दिखाई जा रही है कोर्ट हाउस सिनेमा में 18 तारीख को, और उसकी भाई दो टिकटें दाव पर लगी हैं। आपको जिंदगी लिख के भेजना है और अपना नाम और फोन नंबर। मैं देखता हूँ बहुत लोगों ने भेजा है, गुजराती फिल्म छे तमें गुजराती छो तो भाई जावानू छे। ओके, वो मेरा बहुत मजाक उड़ाते हैं मेरे गुजराती साथी, कहते जब आपको गुजराती बोलनी नहीं आती तो क्यों बोलते हैं, क्यों जो हिंदी बोलते हैं उनको हिंदी बोलनी आती है। कोई बात नहीं, चलेगा चलेगा चलेगा।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: और साहब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रेट्स में बता रहा हूँ आपको, अगर पैसे भिजवाना चाहते हैं तो भाई आज का रेट, टुडे दे आर गिविंग 126.45 इंडियन रुपीस फॉर वन पाउंड। भाई उनके जो ऐप है ना योनो, उसके माध्यम से भेजें या फिर उनकी ब्रांच में जाकर के भिजवाएं, लेकिन पैसे भिजवाने का सही अवसर है क्योंकि जून के महीने में कुछ खास ऑफर्स भी उन्होंने जोड़ रखी हैं कि इफ यू सेंड मोर देन 1000 पाउंड्स देयर इज अ चांस टू विन 75 पाउंड्स वाउचर एवरी they are giving। और इसके अलावा 1 ग्राम गोल्ड कॉइन एवरी वीक when sending over 2000 pounds। TNC apply, terms and conditions।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy to let mortgages and safe deposit lockers। Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch। T's and C's apply।
2: ये है Like Our Radio।
3: Are we there yet?
4: Okay, bags are here, where's the taxi? I can't load the map।
3: Relax, I've booked the Uber already.
4: How? My roaming isn't even working yet.
3: I switched to Simzy before we left London.
4: Simzy? Since when are you the tech expert?
3: Since I decided I want a stress-free holiday.
5: Don't let roaming ruin your holiday spirit. Get the Simzy eSIM for affordable data in India and across the globe. Simzy, holiday travel simplified.
6: T's and C's apply.
7: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
8: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
7: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
8: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
7: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
8: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
7: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorized by the PRA and regulated by the FCMPRA.
9: Location, location, location.
10: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
9: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
10: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
9: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
10: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
9: And the best part, townhouses and villas greens start from just £711,000.
10: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube, prime location,
9: high appreciation
10: in Dubai.

0: ये सुरीली आवाज हरिहरन की, भाई ये आर्टिस्ट ऑफ द वीक है। फील गुड ट्रैक brought
1: to you by Dairy Valley. Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
0: वाह, शंकर जय किशन का वो संगीत जो किसी जमाने में हर किसी की जुबान पर था, गीत

और गीत के बाद वही रिजल्ट आने वाला है कि फिल्म देखने कौन जाएगा, जिंदगी वंस मोर, जिंदगी नॉट जिंदगी।

गुजराती फिल्म वंस मोर। भाई बहुत सारी एंट्रीज आई है, बहुत लोग जाना चाहते हैं देखने के लिए। नोट कर लीजिए 18 तारीख को है शाम को शो जिंदगी वंस मोर, स्टारिंग सिद्धार्थ रंडेलिया, विच इज सिद्धार्थ रंडेलिया। और भाई ये वीकेंड पर सिनेमा में रिलीज हो रही है, लेकिन ये शो जो है 18 तारीख को स्पेशल स्क्रीनिंग है, 18 जून को थर्सडे को शाम 6 बजे। कहाँ भला? कोर्ट हाउस होटल, लंदन ऑक्सफोर्ड सीट के नजदीक भाई। और वहां पर बड़ी मशहूर जगह है, वैसे बता दूं बहुत सारी फिल्मों के प्रीमियर और बहुत सारी फिल्मों के प्री स्क्रीनिंग वहां होती रही है, बढ़िया हॉल है, जाइएगा। लेट मी टेल यू हु इज द विनर, कौन जा रहे हैं भाई। विनर का जो नाम आया है वो इस गीत के बाद बताता हूँ।

0: वो जमाना था जब वो आते थे ना एलपी, वो काले काले तवे, और उस पर सुई भाई कई बार अटक जाती थी, तो एक झलक जो पाता और फिर आवाज आती थी राही वही रुक जाता है, राही नहीं वो सुई रुक जाती थी, रुक रुक रुक रुक, रुक, रुक।
1: Brought to you by Dairy Valley. Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com. Ye hai Leica Radio.
0: और साहब अब बता दो विनर का नाम। दो टिकट वहां पर इंतजार करेंगे, कोई आइडेंटिफिकेशन अपने साथ लेके जाना। आप हैं विनर, आप, अरे आप नहीं समझिए, यू आर द विनर नुसरत देवान। नुसरत जी कॉन्ग्रेचुलेशंस, गो विद समबडी, दो टिकट हैं तो जाइएगा और ये गुजराती फिल्म को एंजॉय कीजिएगा। कोर्ट हाउस होटल नियर ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट, बड़ी मशहूर जगह है, बहुत बढ़िया होटल है, बढ़िया सिनेमा हॉल है उसके अंदर। तो ये एक प्राइवेट शो लगेगा आपको, क्योंकि ऐसा लगेगा कि भाई स्पेशल अरेंजमेंट किए गए हैं आप लोगों के लिए। मैंने वहाँ एक फिल्म देखी थी शत्रुघ्न सिन्हा के साथ, वैसे बहुत सारी फिल्मों के प्रीमियर वहाँ हुए हैं, अच्छी जगह है और बड़ी शहर में ऐसी जगह पे ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट स्टेशन से बाहर निकल के कुछ ही कदम की दूरी पर है। तो गो एंड एन्जॉय। नुसरत देवान इज द विनर, टेक सम सॉर्ट ऑफ आइडेंटिफिकेशन। ऑन 18th ऑफ जून यू विल गेट योर टिकट्स देयर एट द बॉक्स ऑफिस।
1: Women's Cricket Updates, presented by Carmel Prabhakar, are brought to you by TW Pays. If you're overpaying on your card terminal, we'll show you the truth and cut your costs.
2: And RoboThink, where children don't just use technology, they learn to build it. RoboThink.co.uk/Leica.
0: और बहनों भाइयों, ये जो क्या कहते हैं अपना विमेन क्रिकेट चल रहा है ना, इसके ऊपर अगर बेस्ट व्यक्ति कोई है तो उसका नाम है कमल प्रभाकर। और कमल जी अगर लाइन पर हैं तो, कमल जी,
3: रवि जी, गुड आफ्टरनून।
0: सर कल आपसे बात नहीं हो सकी, मैं माफी चाहता हूं, लेकिन भाई आज आपका इंतजार था। कमल भाई, क्रिकेट के बारे में और खासकर विमेन क्रिकेट के बारे में आपसे बढ़िया कौन हो सकता है जानकारी देने वाला। वैसे दिलचस्पी मेरी भी रहती है विमेन क्रिकेट में, लेकिन भाई हम ही दो हैं जो कदर करते हैं, वरना बाकी तो मेन क्रिकेट में सब दिलचस्पी लेते हैं। कमल भाई, क्या चल रहा बताइए विमेंस वर्ल्ड कप?
3: सो रवि जी, वर्ल्ड कप तो T20 विमेंस का वर्ल्ड कप हैज रियली टेकन ऑफ वेरी वेल। ऑल द टीम्स लुक सो गुड, दे आर यू नो फिट, स्किल, दे आर अमेजिंग। पर आज का गेम जो है टुडे, श्रीलंका इज टेकिंग ऑन न्यूजीलैंड 2:30, और हमारा सेकेंड गेम है इंग्लैंड अगेंस्ट आयरलैंड, एंड इट्स गोइंग टू बी अमेजिंग गेम। और ग्राउंड भी बहुत अच्छा लग रहा है
0: बॉस। आज कौन से ग्राउंड में है, कहां पर है मैच आज?
3: ये साउथहैम्पटन में है, साउथहैम्पटन में ग्राउंड में
0: बॉल, अच्छा
3: जी,
0: लेकिन
3: एंड इट्स लुकिंग ग्रेट।
0: ओके, हाँ, मौसम का क्या कहना है, डिस्टर्बेंस तो नहीं होगी ना?
3: वेरी सनी, बहुत अच्छा वेदर है, द ग्राउंड इज लुकिंग ब्यूटिफुल, एंड प्लस द सपोर्टर्स जो आ रहे हैं, बिल्डअप हो रहा है, बट आई थिंक इट विल बी अ ग्रेट गेम बिकॉज इट्स गोइंग टू अ नेक्स्ट लेवल। बीजी, आपने अभी पता नहीं लेडीज क्रिकेट लेटेस्ट देखे है कि नहीं, बट आपको देखना चाहिए, ग्राउंड में आओ एक दिन और देखना, इतना स्किलफुल हो गया ये लोग।
0: नहीं नहीं, मैं तो आऊंगा, जरूर देखने आऊंगा, पर बात क्या पता है, मैं तो पुरुषों का क्रिकेट भी देखने जाता हूँ ना, तो क्रिकेट कम देखता हूँ। वो जो आईपीएल में वो लड़कियां जो वो क्या कहती है, झंडियां सी लेकर के डांस करती है, वो ज्यादा देखता हूँ।
3: हाँ, आपको वहां से ही सीखे लगते
0: हैं। बेस्ट, इट्स वंडरफुल बीइंग विटनेस टू द मैच ऑफ विमेन क्रिकेट। और मैं चाहता था, चल अब आपसे अक्सर बात हुआ करेगी जब तक ये वर्ल्ड कप चलता है, और थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, कीप इन टच और बताते रहेंगे, क्रिकेट का एंजॉय कराते रहेंगे लोगों को।
3: थैंक यू रवि जी,
0: थैंक यू, बाय बाय।
4: This update was brought to you by TW Pays. Visit twpays.com/Leica for a chance to win a free card terminal. T's and C's apply.
2: And RoboThink. This summer, give your child a head start in AI, robotics and coding. Places are limited. Save 20% on full week summer camp bookings with code LEICA20 at participating locations. Book now at robothink.co.uk. Terms apply.
0: तो साहब वुमेन क्रिकेट के बारे में बात हुई हमारी कमल प्रभाकर से. मैं कह रहा था कि चीयर गर्ल्स को देखने कुछ लोग जाते हैं, पर मैं तो सची मुची कुछ थोड़ी बहुत क्रिकेट खेला भी हूँ, अपने कॉलेज की टीम में भी था और क्रिकेट में दिलचस्पी रहती है, इसलिए मैं नहीं भी जब चल रहा हूँ दूर दूर ढूंढता रहता हूँ कहीं किसी का भी मैच चल रहा हूँ. पत्नी कहती है कि आप तो किसी का मैच भी देखने के लिए, या तो लोग होता अपनी टीम का देखें, अपने ब्रिटिश टीम इंग्लैंड की टीम खेल रही हो या फिर भारत की टीम खेल रही है, एशिया की कोई टीम खेल रही हो, पर आप तो कहते हैं वो केनिया की टीम खेल रही है उसको भी देखने लग जाते हैं. दिलचस्पी होती है. तो साहब अब वो साउथ और ट्रेवल वालों की बात बता दूं आपको, भाई वो कह रहे हैं कि मौका है, मौसम सुहाना है और आपको कहीं घूमने जाना है तो साउथ और ट्रेवल का नंबर मिलाना है, क्योंकि दे आर द विनर्स ऑफ द हार्ट्स ऑफ द ट्रेवलर्स और भाई जो सैलानी हैं उनके, लेकिन साथ में वो ब्रिटिश ट्रेवल अवार्ड के भी विजेता हैं. आप उनसे डील लीजिएगा. दे आर ऑफरिंग के बीच ब्रेक्स या फिर सिटी एस्केप्स या फिर हॉलीडे डील्स दैट इंक्लूड फ्लाइट्स होटल्स एंड एट ऑल प्रोटेक्शन. उसके लिए कॉन्टेक्ट कीजिएगा 0208 574 8410.
1: ये है Leica Radio. This super hit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. With a range of grains and flavors from around the world, you can make every meal memorable.

0: समय भी गया और मेरा दिल भी गया। बस चिंतन के विषय में बहुत सारी प्रतिक्रियाएं, बहुत सारे रिएक्शन आ रहे हैं और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि चिंतन बहुत अच्छा था। हमारे वो जगदीश जी तो कहते हैं कि मेरी पत्नी की डेथ हो गई थी और जब से उनकी डेथ हुई है तब से मैं इस सवाल का जवाब ढूंढ रहा था कि कहाँ जाते हैं लोग दुनिया से जाने वाले, और आज आपके चिंतन में जानकारी मिली है, तसल्ली मिली है कि वो ईश्वर में विलीन होते हैं तो वो हमसे दूर नहीं है। लेकिन इसके अलावा भाई और भी बहुत सारे लोगों के रिएक्शन आए हैं। सारा पटेल कहती है, रवि जी कहते हैं कि जो चले गए हैं उन्हें हमें भूल जाएं, पर कैसे भूल जाएं? नहीं, भूलने के लिए नहीं, सारा जी भूल ही नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ वो रोए ना, बहुत दुखी ना हो, क्योंकि उनकी आत्मा तभी खुश होगी जब वो हमें हंसते खेलते फूलते फलते देखेंगे, आगे बढ़ेंगे, बच्चे तरक्की करेंगे, तो वो चाहते हैं। तो मुझे विश्वास है कि पटेल साहब जी की पुण्य आत्मा जो है वो आशीर्वाद दे रही होगी बच्चों को और आपके परिवार को। तो वी कांट फॉरगेट देम, क्योंकि अपने जो अपने होते हैं भाई, और हम तो और भी ज़्यादा इमोशनल होते हैं जो एशियन लोग होते हैं। वसंती एडमिंटन में कहती है, वो गीत जो लगाया था आपने मेरे नाम कर दो, कौन सा था बसंती, मुझे तो याद नहीं है बसंती, जो भी था अपने नाम कर लो। एजाज चैशा में सुन रहे हैं, हंसा वोरा और अर्जन जी थैंक यू वेरी मच। और भाई इसके अलावा जो और भी लोगों ने चिंतन के विषय में लिखा है, प्रीति बेल्जियम में सुन रही हैं, कहती हैं पापा जी की याद आ गई, मेरी अपनी बहन भी बहुत याद आई आपका चिंतन सुनकर। आज का चिंतन था भाई, दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ, भेजा था हमें शौनक परिवार ने और बालकिशन शौनक जी जिनका पिछले दिनों निधन हुआ और उनकी स्मृति में उन्हें समर्पित हमने किया आज का चिंतन, कि यही कहता भाई जाने वाले चले जाते हैं, जाने वालों की याद आती है, वो लौट के नहीं आते हैं, तो हम चाहते हैं कि उनकी आत्मा प्रसन्न हो तो हमें उन्हें फलते फूलते अपने आप को तरक्की करते हुए आगे बढ़ते हुए दिखाना है, बताना है कि देखो आपके बिना भी जी रहे हैं ना, और अच्छी तरह से आपके आशीर्वाद से हम तरक्की कर रहे हैं तो वो खुश होंगे। उल्लास टोरंटो में हमें सुन रही हैं, थैंक यू वेरी मच सुनीता शर्मा जी, सो नाइस ऑफ यू, इट्स वेरी डिफिकल्ट जो अपनों को भाई भुलाना, लेकिन अपनों को खुश रखने की कोशिश करना ये हमारा कर्तव्य बनता है। साउथ हॉल ट्रेवल का भाई हमने बता दिया आपको कि वो आपको चाहते हैं कि छुट्टियों पे जाएं, दौरा करके आएं। भाई उनका फोन नंबर फिर दोहरा दूं, 0208-574-8410।
1: Holiday breaks were brought to you by South Hall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. This is Leica Radio.
2: Celebrate Father's Day on Sunday, 21st of June in Ambala style. Ambala Sweets has been bringing families together through taste and tradition since 1965. Freshly made, beautifully presented and perfect for their dad who deserves the very best. Classic laddus, habsi halwa or an assorted mithai selection. Make his day extra special with a gift from Ambala. Order online today at ambala.co.uk and celebrate Father's Day in Ambala style.
3: कोई भी रिश्ता जब नया होता है ना, exciting होता है क्योंकि वो नया होता है.
4: From friends to lovers to total chaos, the perfect cocktail is back.
5: दोस्ती की कोई value नहीं है ना तुझे?
6: उतने अच्छे दोस्त भी नहीं है.
4: Shahid Kapoor, Kriti Senon and Rashmika Mandanna come together in this summer's hottest romantic comedy. Cocktail 2 in cinemas June the 19th.
7: Dulhan ke liye makeup.
4: For cinema listings and local info, visit Bakrania Media on Instagram.
8: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
9: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
8: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
9: गारंटेड
8: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल,
10: फोन 0208574-8410।
8: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 0208574-8410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
11: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
12: Pimpin'
6: Pepe's Piri Piri is turning up the heat. Pepe's Piri Piri on Belgrave Road, Leicester, with grills fired up and ready to serve your flame-grilled Piri Piri favourites. Pepe's Piri Piri, definitely worth a visit.
7: हे फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क है ना
10: वेल शी इज टॉकिंग अबाउट जयमीन फूड पोटैटो चिप्स क्रंची टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद इन चार मजेदार फ्लेवर्स
7: क्रंच कैन नॉट वेट सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जयमीन फूड्स पोटैटो चिप्स नाउ
12: द फ्यूचर बिलोंग्स टू क्रिएटर्स एट रोबोथिंक समर कैंप्स चिल्ड्रन बिल्ड रोबोट्स लर्न कोडिंग एंड फ्यूचर रेडी स्किल्स लाइक आवर लिसनर्स गेट 10% ऑफ फुल week bookings with code LIKER10. Kit package worth over £7,500. Visit book.robothink.co.uk/LIKER.
13: एक ऐतिहासिक अने दिव्य अवसर पेरिस मा भव्य BAPS स्वामीनारायण मंदिर ना ग्रैंड ओपनिंग मा दर्शन नो लाभ आप पवित्र यात्रा मा जोड़ाओ आपना परिवार साथे जहां मड़शे शांति भक्ति अने आनंद अने साथे आईफिल टावर सेन रिवर क्रूज अने पेरिस सिटी टूर नो आनंद मानो डिपार्चर 5 सितंबर ना मंत्रा हॉलीडेज कॉल करो 02030373633 मंत्रा हॉलीडेज व्हाट्स योर ट्रैवल मंत्रा
1: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.

0: लिखिए एक नई मोहब्बत की दास्तां तुमसे तुम तक हर रोज रात 8 बजे आपके अपने जी टीवी HD पर।
1: Million people listen to commercial radio each week. That's 80 million ears, give or take. Amplify your advertising at radiocentre.org.
2: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.
3: ये शहनाइयां दे रही हैं दुहाई, कोई चीज अपनी हो रही है पराई।

0: ये शहनाइयां दे रही हैं दुहाई, कोई चीज अपनी हुई है पराई, किसी से मिलन है तो किसी से जुदाई।
1: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles, is coming with more flavors and healthy option in a convenient bowl. Coca Noodles, quick and tasty noodles in 12 flavors.
2: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: और लीजिए भाई, लेट मी टेल यू द रेट्स फॉर LemFi इफ यू वांट टू सेंड मनी टू योर पीपल। एक पाउंड के बदले वो दे रहे हैं भारतीय करेंसी में 126.82 रुपीस, पाकिस्तानी 373.43, श्रीलंकन रुपए 448.9, बांग्लादेशी टके 164.75 एंड अफगानी 84.0।

0: फिल्म एहसास 1979, सपनों के शहर, किशोर दा. नेक्स्ट आवर वी आर रिमेम्बरिंग हेमंत कुमार ऑन हिज 106th बर्थ एनिवर्सरी. हेमंत कुमार ऑन लाइक अ गोल्ड विद मी पाली ब्रह्मभट.
1: The Midlands on DAB Digital Radio. This is Leica Radio, a part of the Leica Radio Network.
2: Top stories this hour. Donald Trump says he'll release the text of a peace deal agreed with Iran in a formal setting. The US president's at a meeting of the world's leading democracies.

0: to Leica Gold 2 on Leica Radio mobile app, leicaradio.com and Alexa. Play Leica Gold 2.
1: ZTV HD पर देखिए एक अनोखी प्यार की दास्तां। मिलिए 46 साल के बिजनेस टाइकून आर्यवर्धन और 19 साल की प्यारी सी अनु से।
2: तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है?
3: खुद से भी ज्यादा।
1: जिन्हें तकदीर चुपके से बांध रही है एक अनजाने रिश्ते में।
3: जो बात मेरे दिल में वही बात आर्य सर के दिल में भी है।
1: क्या ये नजदीकियां बदल देगी उनकी किस्मत की रेखा? देखिए तुम से तुम तक हर रात 8 बजे ZTV HD पर। अवेलेबल ऑन स्काई 707, स्काई ग्लास 714, वर्जिन मीडिया 809, BT 394।
4: Did you know that Leica Gold is the UK's first Asian retro station, playing Bollywood classics 24/7, and with your favorite presenters live? Get the tune-in details at leicagold.com. Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
5: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
6: Don't say it, don't say it.

The greatness of Hemanda was other music directors used to call him for singing. ये है शंकर जयकिशन फिल्म पतीता जिन्होंने गवाया था लता मंगेशकर के साथ हेमंता को. नेक्स्ट गाना कल्याण जी आनंद जी ने उनको गवाया था फिल्म ब्लफ मास्टर में. That's the greatness of Hemant Kumar. उनको याद कर रहे हैं आज on his 106th birth anniversary. The great Hemant Mukhopadhyay. जी हाँ, ये गाना हेमंता को गवाया था कल्याण जी आनंद जी ने. राजेंद्र कृष्ण की लिरिक्स. हीरो शमी कपूर. ब्लफ मास्टर 1963.

और नेक्स्ट गाना जो है फिल्म शर्त का, जिसमें संगीत उनका ही था। एक गाना है जो दो वर्जन्स है, फीमेल वर्जन एंड मेल वर्जन। गीता दत्त ने यही गाना गाया था जो हेमंता ने गाया है, ना ये चांद होगा ना तारे रहेंगे। फिल्म प्रोडक्शन इन्होंने हेमंता बेला प्रोडक्शन के नीचे 20 साल बाद कोहरा, बीवी और मकान, राहगीर, खामोशी जैसी फिल्में इन्होंने प्रोड्यूस की थी। हेमंत कुमार। Do you know he scored music for a Hollywood film, Siddharth? Conrad Rooks ki film thi. And it was the first Indian to play back for Hollywood. And he got a honorable citizenship for Baltimore. In 1980, he had a heart attack and then he couldn't sing. Hemant Kumar, who passed away on 26th September 1989 due to a heart attack.

0: ए बोला चल पिज्जा।
1: नहीं दादा आज मूड नहीं है।
0: अबे मूड नहीं है, बीवी से झगड़ा हुआ पिज्जा, गर्लफ्रेंड ने छोड़ दिया ना पिज्जा, माल कमा है पिज्जा, माल कमा है तो और पिज्जा। अरे हमारे खुशी का सबसे अच्छा पब्लू बोलो यही है।

0: है रक्षक।
1: महेंद्र कपूर, कल्याण जानन जी का संगीत, गुलशन बावरा, एंड दिस इज परिवार फिल्म।
2: स्टार ट्रैक ऑफ द आवर स्पॉन्सर्ड बाय स्टार टूर्स। चाहे यूरोप हो या दुनिया का दूसरा कोना, हर ट्रिप फील होता है द स्टार टूर्स एक्सपीरियंस। विजिट startours.co.uk।

0: लिखिए एक नई मोहब्बत की दास्तां तुमसे तुम तक हर रोज रात 8 बजे आपके अपने जी टीवी HD पर।
1: कुछ एक्साइटिंग खाने का मन है तो आओ एग जंक्शन लेस्टर, यहाँ मिलेगा सिजलिंग एग कीमा, फ्लेवरफुल बॉयल टिक्का राइस और स्पेशल वेज स्टार्टर्स। सबके लिए कुछ न कुछ है। 62-64 बेलग्रेव रोड LE4 5AS पर। चाहे डाइन इन करो, टेक अवे लो या ऊबर ईट्स और डिलीवरी से मंगवाओ, कॉल कीजिए 0116-332-5100। एग जंक्शन जो वेम्बली और किंग्सबरी में तो है, अब लेस्टर में जहाँ हर बाइट है एक्स्ट्रा।
2: Punjab, the biggest tunes.

0: Shah Basmati Rice. Available now at all Falcon stores, Worli Superstore, Opus and all independent stores nationwide.
1: Citybond Travel proudly presents Yatra Tours 2026.
2: Discover Kailas Mansarovar, Chardham, Amarnath, Sri Lanka with Ayodhya, Ayodhya with Kashi, the Golden Temple Amritsar and more.
1: Book before the 31st of October and get £150 off Kailash or £100 off any other Yatra Tour.
2: Also explore 2026 cruises
1: from Alaska to the Caribbean, the Mediterranean, Japan and Korea. Visit us at 5 Melton Road, Leicester, or call Citybond Travel on 01162 167 225. We're at all protected.
3: Maharaja Tours presents Diwali Dhamaka 2026. 12-night Diwali or Navratri cruise on MSC Virtuosa. Bhajan jamming, Mehfil nights, Ras Garba, Bollywood entertainment or full-on maza. Spain or Portugal ke sunshine ports, full board cruise or Indian khana included. From only £1,179 per person, visit maharajatours.co.uk ya call 07956 154 846.
0: Celebrate Father's Day on Sunday, 21st of June in Ambala style. Ambala Sweets has been bringing families together through taste and tradition since 1965. Freshly made, beautifully presented and perfect for their dad who deserves the very best. Classic laddus, habsi halwa or an assorted mithai selection. Make his day extra special with a gift from Ambala. Order online today at ambala.co.uk and celebrate Father's Day in Ambala style.
4: खाखरा क्रंच, भाखरी मंच, चिक्की स्वीट, पापड़ बीट, पिकल्स हीट, ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक।
5: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स, खाखरा नमकीन, पापड़, पिकल्स, चिक्की, पॉट मील्स एंड मच मोर।
4: जयमिन फूड्स देसी क्रेविंग्स अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स।
6: गड़बड़ घोटाला छे, प्रॉब्लम्स मोटा छे, पर बधु ऑलराइट छे।
7: मैं चने बैक टू बैक थ्रन मूवीज जोई ली थी।
6: गेट रेडी फॉर अ फुल ऑन कॉमेडी कियोस विथ वीरज गिलानी एंड उमंग व्यास इन द मूवी बधु ऑलराइट छे।
7: बेहतर कलाक मत पाछो आवी जस ने पछि बधु ऑलराइट थई जशे।
6: इन सिनेमास ऑन 12th ऑफ जून। फॉर मोर इन्फो विजिट बकरानिया मीडियास इंस्टाग्राम हैंडल।
8: एवू लागे छे के पिक्चर चालछे।
9: Brands that use radio are 49% more likely to get noticed. Amplify your advertising at radiocentre.org. Assuming you want to get noticed.
10: New hits on Leica Radio.

लाइका रेडियो पंजाबी लाइका रेडियो मोबाइल ऐप ते लाइका रेडियो .com ते एलेक्सा प्ले लाइका रेडियो पंजाबी। ये है लाइका गोल्ड।

0: to Leica Gold 2 on Leica Radio mobile app, leicaradio.com and Alexa. Play Leica Gold 2.
1: ZTV HD पर देखिए एक अनोखी प्यार की दास्तां। मिलिए 46 साल के बिजनेस टाइकून आर्यवर्धन और 19 साल की प्यारी सी अनु से।
2: तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है?
3: खुद से भी ज्यादा।
1: जिन्हें तकदीर चुपके से बांध रही है एक अनजाने रिश्ते में।
3: जो बात मेरे दिल में वही बात आर्य सर के दिल में भी है।
1: क्या ये नजदीकियां बदल देगी उनकी किस्मत की रेखा? देखिए तुम से तुम तक हर रात 8 बजे ZTV HD पर। अवेलेबल ऑन स्काई 707, स्काई ग्लास 714, वर्जन मीडिया 809, BT394।
4: This super hit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. Take your taste buds to the next level with Tilda.

0: लिए एक नई मोहब्बत की दास्तां, तुमसे तुम तक, हर रोज रात 8 बजे आपके अपने जी टीवी HD पर।
1: कुछ एक्साइटिंग खाने का मन है तो आओ एग जंक्शन लेस्टर, यहाँ मिलेगा सिजलिंग एग कीमा, फ्लेवरफुल बॉयल टिक्का राइस और स्पेशल वेज स्टार्टर्स। सबके लिए कुछ न कुछ है। 62-64 बेलग्रेव रोड, LE4 5AS पर। चाहे डाइन इन करो, टेक अवे लो या ऊबर ईट्स और डिलीवरी से मंगवाओ, कॉल कीजिए 0116-332-5100। एग जंक्शन जो वेम्बली और किंग्सवे में तो है, अब लेस्टर में, जहाँ हर बाइट है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी।
2: This is the largest commercial Asian radio network in the UK. A true Radio Wally Cracker Classic. Name the 90s number. This is Laika.

रोने दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया, वो छूट जाएगा।

0: ऐसा जब नया होता है ना, एक्साइटिंग होता है क्योंकि वो नया होता है।
1: From friends to lovers to total chaos, the perfect cocktail is back.
2: दोस्ती की कोई वैल्यू नहीं है ना तुझे, उतने अच्छे दोस्त भी नहीं है।
1: Shahid Kapoor, Kriti Senon and Rashmika Mandanna come together in this summer's hottest romantic comedy. Cocktail 2 in cinemas June the 19th.
3: Maa, dulhan ke liye makeup.
1: For cinema listings and local info, visit Bakrania Media on Instagram.
4: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
5: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
4: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
5: गारंटेड
4: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल,
5: फोन 02085748410।
4: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
6: If you see somebody showing any of the signs of a stroke, you don't have to think about it. You just dial 999. Use the FAST test. F, face. Has their face fallen on one side? Can they smile? A, arms. Can they raise both arms and keep them there? S, speech. Is their speech slurred? T, time. Time to call 999 if you see any one of these signs. Act fast. Make the call. Dial 999.
7: This is the Leica Radio Network, broadcasting across the UK. Leica Radio Network, broadcasting across the UK with Asian stations. 7 stations. 1 podcast. 1 mobile app. Advertise on Leica Radio Network, offering the largest Asian radio and digital content in the UK. Call 0116 471 0697 or sales at leicamedia.co.uk. Easing you through the night with the Midlands' biggest Asian hits on Leica Radio.